गीता दत्त और साथियों की स्वर रची रचना बाजी फिल्म से आप सुन रहे हैं 1951 रिलीज फिल्म सचिन देव बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी की।

किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम था लड़का लड़की। 1966 रिलीज ये फिल्म रही थी। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। और अब जिस बात की आशा थी, इंतजार था, वो पल आ गए, वो आ गए हैं।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना आवारा फिल्म से साथियों अभी आपने सुनी। 1951 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों एक समय था जब पहेलियां बहुत प्रचलन में थी। पहेली विधा से मस्तिष्क की कसरत होती है और ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि अब भी पहेलियां प्रचलन में है लेकिन बहुत कम। फिल्म जगत में पहेली आधारित गीत भी सजे हैं, उन्हीं में से एक गीत रचना ये भी।

आशा भोसले और साथियों की आवाजों से सजी रचना मेरा नाम जोकर फिल्म से आप सुन रही हैं। 1970 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

नवरात्रि फिल्म से आपने सुनी 1955 रिलीज ये फिल्म चित्रगुप्त का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। और अब आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सच रही है ये रचना। भोर हुई, पंछी जागे, इंसान जागे, बढ़े अपने अपने कार्यों की ओर, और इन्हीं में से एक ये भी।

0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी।

0: की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान CP Grams की समाधान दीदी।

0: ഇന്നത്തെ രഞ്ജിനി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഏവർക്കും ശുഭരാത്രി. ആകാശവാണി 103.6 റിയൽ FM, ഇനി FM ഗോൾഡ് ഡൽഹി.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे. केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया. श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है. ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है. साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है. इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए. उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया. श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी. केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है.
2: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान

0: किया है ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज महिलाओं ट्रांसजेंडरों के लिए ई ऑटो ड्राइविंग उत्थान और रोजगार योजना दुर्गा के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक ई ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ई ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we will be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-0481, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Ubha Rohatki with my co-anchor Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra Karyakram mein aapka swagat hai. Pratyek somvar ki tarah prashno ko nit prashn poochne ke liye aap hamare phone number 2331-4444-2331-0481 और 2371-7106 पर फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का स्टडी कोड 011 भी डायल करें। कृपया याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए हम स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: सबसे पहले हेडलाइंस के साथ अनुभव रोहित।
0: थैंक यू अमित। Benchmark domestic indices decline, Sensex sheds over 500 points, Nifty settles at 22,363.

0: country's retail inflation rises to 5.5% in September this year, and global crude oil prices rise over 1%.
1: सितंबर के दौरान खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.45% दर्ज हुई और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1% की तेजी।

0: For you, our listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: शून्य दशमलव 8% की गिरावट से 548 अंक गिरकर 71,925 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% के नुकसान से 157 अंक गिरकर 22,363 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
0: Benchmark domestic equity indices failed to hold their initial gains and ended in the negative zone today. The Sensex declined 548 points, nearly 0.8%, to close at 71,925.07% to settle at 22,363. However, the broader market at the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. Index gained 1.4%.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में नुकसान दर्ज हुआ। नुकसान उठाने वाले प्रमुख शेयरों में आईटीसी 3.2%, टेक महिंद्रा 3.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.1% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि बीएल 1.4%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 0.7% की बढ़त से बंद होने में कामयाब रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, hospitals shed 2%, FMCG fell over 1.3%, and PSU banks dropped 1%. In contrast, housing finance gained nearly 1.9%, capital goods jumped 1.3%, and realty added 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,291 companies advanced, shares of 2,164 companies declined, and shares of 281 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की मजबूती से 95.78 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। और सबसे पहले श्रोता के तौर पे दिल्ली से जगदीश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
2: हाँ जी, नमस्कार सर, गुड इवनिंग।
1: नमस्कार।
2: हाँ जी, मैं जगदीश जोशी बात कर रहा हूँ मांगली दिल्ली से।
1: जी,
2: तो मेरा क्वेश्चन, हालांकि दो क्वेश्चन थे लेकिन एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा आउट जा रहा है उस प्रोग्राम से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ दिन पहले शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से या जैसे भी हुआ तो प्राइस कुछ कंट्रोल में लगभग आया था, तो फिर दोबारा से धीरे धीरे प्राइस वही जा रहा है, तो क्या दोबारा स्टॉक मतलब कंट्री में है नहीं, या फिर दोबारा से जो काला बाजारी जो उनके लिए स्टॉक की जो लिमिट रखी थी उससे ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं वो लोग फायदा मर्चेंट लोग फायदा उठा रहे हैं? बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा एक्सपर्ट राय दीजिए।
1: चीनी की उपलब्धता और चीनी का स्टॉक कितना है, चीनी की कीमतें कैसे रहेंगी?
3: जोशी साहब, देखिए, एक तो त्योहारी मांग काफी तेजी से बढ़ रही है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इसके बाद एक के बाद एक दूसरे त्योहार हैं, तो इन त्योहारी मौसम में मांग में काफी तेजी की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप कीमतों में उछाल एक बार फिर से देख रहे हैं। हालांकि कीमतें अभी उस स्तर पर नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ, एक रुपया भी बढ़ता है तो वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय होता है। और जहां तक सवाल स्टॉक लिमिट का है, तो देखिए, स्टॉक लिमिट में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको किसानों के हित का भी ध्यान में रखना है, चीनी मिल के हितों का भी ध्यान में रखना है, और उनसे भी सबसे ऊपर है कि आम ग्राहकों के हितों को ख्याल में रखना है। आप जितने भी बंदिशें लगाए

0: कीमतें बढ़ने की आशंका उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तो अभी के समय में बहुत अच्छी खबर तो मेरे पास आपके पास आपके लिए नहीं है कि दाम में कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी आएगी, लेकिन हाँ उम्मीद ये कर सकते हैं कि अक्टूबर के बाद, माफ कीजिएगा, नवंबर के बाद जो है 15 नवंबर के बाद थोड़ी सी कीमतों में गिरावट आए।
1: Let's move on to the next story. HCL Technologies today reported its financial results for the second quarter of the current financial year, that is from July to September. The company's revenue from operations increased around 11.5% on an annual basis to 35,620 rupees. The company's net profit rose over 21% to 5,132 crore rupees on an annual basis. HCL Tech also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. Shishir, you know, the markets have opened today, the first day of the week, on a negative note. Yeah, last week it ended, of course, it was an 8-week high that the markets ended, after 8 weeks that the markets closed in green. But today again, we are seeing the markets going down.
0: The problem is that the barrage of bad news is still too stopped. That is the one of the big problems. So if you see the crude prices, almost around $105 yes. a barrel. Then we are seeing a lot of attack news about the attack in Saudi Arabia. That means the more disruptions possible in the crude oil market. Hmm. Then there was expectation that inflation is expected to go up, as we have now a kind of expectation that when the MPC will meet in the month of December, there could be another rate hike. Yes. So this was the third one. And the other thing is about the China. In China also today we saw a lot of down in all the stocks. Yeah. So combination of all the bad news had an impact on the stock market. Market is still looking for some kind of positive news, but unfortunately they are getting nothing, and that is why we are seeing a lot of selling pressure in the market.
2: मुंबई से अगले श्रोता के तौर पर रत्नाकर हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है वो ब्लड रिलेशन में मैं मेरे लड़के के नाम, मिसेस के नाम पर कर सकता हूँ क्या? ये सवाल है। और आने वाले समय में पेट्रो के शेयर्स कैसे रहेंगे, ऑयल के शेयर्स में परचेस करना कैसा रहेगा?
0: ऑयल में कौन सा, आप जो तेल उत्पादन करती हैं या तेल की मार्केटिंग करती हैं? चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि क्या आप अपनी पत्नी के नाम अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो ट्रांसफर जो है वो मार्केट प्राइस पे होगा, तो कैपिटल गेन की भी बात बन सकती है। बेहतर है उनको नॉमिनी बना करके रखिए कि कल होकर के कोई भी दिक्कत होती है तो उनके पास सीधे सीधे वो शेयर पहुंच जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी करेंगे तो आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि तेल का क्या हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समय में जितनी भी तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में आपको तेजी दिखेगी। जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ देश में तीन है, उनके शेयरों में थोड़ी गिरावट दिखेगी, उनके मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका। और ये भी आप ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं, अगर बढ़ते हैं तो इन कंपनियों को कुछ हद तक फायदा होगा, अभी उनके लिए अंडर रिकवरी है, तो जिसकी वजह से उन कंपनियों में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। संजीव हैज जॉइंड अस फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजीव, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्कार, गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्रा, एंड गुड इवनिंग सुषमा।
0: गुड इवनिंग।
4: सर, एक सवाल अभी आपसे सुन रहे थे कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज गॉन 5.45 फॉर ए कंज्यूमर, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा सा सब्सिडाइज अनियन सप्लाई करना शुरू किया था एट द रेट ऑफ 35, वेयर एज द मार्केट प्राइस इज 75। अब वो पिछले 3-4-5 दिन से देयर इज नो सप्लाई ऑन एनी ऑफ द आउटलेट, विच इज एडिंग टू द कोर इन्फ्लेशन फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय।
0: इन्फ्लेशन इज नथिंग टू डू विद द ओनियन, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन इज माइनस फूड एंड फ्यूल। या
4: व्हाट आई मीन बाय कोर
0: इन्फ्लेशन कंसर्निंग द कंज्यूमर डेली बाइंग, सो प्लीज बी क्लियर ऑन दैट। थैंक यू सर, प्लीज गो अहेड।
4: गवर्नमेंट के जो राइट, जो गवर्नमेंट के डोमेन में आती है कंज्यूमर आइटम सप्लाई करना, उनकी सप्लाई तो ऐसे ऐसे माहौल में थोड़ी सी रेगुलर होनी चाहिए।
0: देखिए, आज की जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, जिसके बारे में और ब्यौरा बाद में इस कार्यक्रम में दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं अगर मैं आपको शुरुआती आंकड़े करूं, तो जो 5.54% महंगाई

0: के आंकड़े, उसमें एक बड़ी भूमिका प्याज की रही है, जहां पर हमने महंगाई दर सितंबर के महीने में 108% देखी है, जो कि काफी ज्यादा है। और दूसरे अलावा और भी तीन सब्जियों की अगर हम बात करें, भिंडी की बात करें, माफ कीजिएगा भिंडी नहीं, अदरक की बात करें, लहसुन की बात करें और नींबू की बात करें, यानी कि टॉप 5 आइटम्स में 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारी आपकी थाली से जुड़ा हुआ है, जिसको आप थालीनॉमिक्स भी कह सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि सरकार इसका आपूर्ति, इसकी जो आपूर्ति होता था वो नहीं है, और जो स्टॉक भी जो रहता था वो उस तरीके का नहीं है। तो मदर डेयरी पे, जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है वो प्याज की आपूर्ति की जा रही थी, प्याज अभी भी वहां पर उपलब्ध है जहां तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी मैंने देखा है। और बाकी जो जिसको कहते हैं ना कि वो ट्रक लगा करके जो दिल्ली में आपूर्ति की जा रही थी, वो भी चल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि इस बार प्याज के पैदावार पर थोड़ा असर पड़ा है। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ प्याज की पैदावार होती है, वहां से नई फसल जल्दी ही बाजार में आएगी। तो आप नवरात्रि के बाद गिरावट होना जो है वो आप उम्मीद कर सकते हैं।
1: और नवरात्रि में वैसे भी बहुत सारे घरों में प्याज की आपूर्ति,
0: नवरात्रि के ठीक अगले दिन प्याज की कीमत काफी ऊंची होती है।
2: जी
1: जी शिशिर, वापस से घरेलू बाजार के बारे में मैं आपसे कहूंगा, बाजार में टिगड़ नहीं है, कच्चे तेल की कीमतों ने उसमें कहीं ना कहीं और जो सेंटिमेंट्स हैं उसको और दबा के रखा है। क्या जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, हम कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, क्या वहां से बाजार कुछ अच्छी खबरों की उम्मीदें नहीं कर रहा, या बाजार को वहां से ट्रिगर नहीं मिल पा रहा?
0: देखिए, पॉजिटिव तो वहां से है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे अभी आप एक और तथ्य उसमें जोड़ लीजिए, वो ब्याज दर है, और ब्याज दर शेयर बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
2: जी,
0: ब्याज दर बढ़ती है तो आप सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो बैंक में ही पैसा रखो, या ऐसे जगह पे रखो जहां आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार में अब ब्याज तो मिलता नहीं है, और शेयर बाजार में आमदनी आपकी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हमारे बड़े जो विदेशी निवेशक हैं वो कहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें काफी ऊंची है, और भारत में भी एक शुरुआत हो चुकी है, अगली शुरुआत हम उम्मीद तो नहीं, मतलब आम श्रोता के लिहाज से अगर करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उससे हम भाग भी नहीं सकते कि दिसंबर में ब्याज दर फिर बढ़ने की उम्मीद है। अब ऐसे में बाजार के लिए तो खबर वैसी नहीं है जो बाजार को अचानक उछाल दे। दूसरी तिमाही के नतीजे, मुझे उम्मीद है कि कुछ कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे, शुरुआत जो है वो एक दो से हो चुकी है, और उनके नतीजे जो है एक संकेत जो दे रहे हैं कि नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन बाकी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो इस सकारात्मक को बढ़ावा दे, बल्कि उस सकारात्मक को दबाने के लिए नकारात्मक खबरों की बाढ़ आ गई।
2: शिशिर, यू नो अमित इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर सीम्स टू बी अ लैक ऑफ triggers, but before I come take my question to you, we have the next caller with us online. Nitin is calling us from Delhi. Nitin, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: नमस्कार जी।
2: नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
3: सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बैंक में हम FD कराते हैं और एक साल के बाद हम मैच्योर होने पर FD लेके आते हैं, तो उसमें हमारे को अलग से कंपाउंड ब्याज मिलता है, वो किस ढंग से उसको माने, किस ढंग से वो कंपाउंड ब्याज माना जाएगा? उन्होंने हमें ये बताया ना कि 3 महीने भी ले सकते हैं, 1 महीने भी ले सकते हैं, पर आपका प्रिंसिपल फिर लास्ट में 1 साल के बाद वही मिलेगा, फायदा नहीं होता, 1 साल के बाद आप लेंगे तो कंपाउंड आएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे हम गोल्ड खरीद के लाएंगे, तो अगर हम उसको प्योर गोल्ड लेके आएंगे, ना कि हम कोई जेवर बनोगे, तो जो गोल्ड हम सिक्का लाएंगे तो उस सिक्के को हम सेल करेंगे, तो जो वैल्यू हम लाएंगे तो उसके बाद वो हमसे रिटर्न में लेता है कि नहीं लेता है? ऐसा कभी कभी होता है कि वो नखरेदते हैं कि पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आती गोल्ड परचेज?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला आपका जो प्रश्न है ब्याज को लेकर के, तो बैंक में आप जितने मियाद के लिए आप रखेंगे उस हिसाब से ब्याज का आकलन होता है, और जो बैंक अगर सालाना आधार पर ब्याज का आकलन करते हैं और आपने एक ही साल पे ले लिया, तो एक साल के अंत में जो ब्याज की दर होगी वो आपको मिलेगी।
2: शिशिर, मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं, जब ब्याज मिलता है तो एक आपको बैंक ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं।
0: मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पहला, आपने अगर एक साल के लिए ब्याज के लिए, एक साल के लिए आपने टर्म डिपॉजिट किया है, और वहां पर आपने एक साल के लिए जिस दिन आपने ब्याज जिस दिन आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया उसी दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि आपको एक जो स्टेटमेंट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको एक साल के अंत में कितना पैसा मिलेगा, तो वो तो स्पष्ट है ना। अब आप उसको तीन महीने में, छह महीने में, साल भर की बात करते हैं, लेकिन वो तीन महीने छह महीने की बात नहीं। अगर आपने साल भर के लिए कर रखा है तो साल के अंत में मियाद पूरी होने के बाद मूल और ब्याज आपको दोनों मिलेगा। तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं आती। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया कब शुरू होगी? जब आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, तो जो रकम आपके पास जमा है उस पर ब्याज की दर का आकलन होगा। दूसरा इनका प्रश्न था कि सोना जो खरीदते हैं सिक्के के तौर पर और उसे बेचने जाते हैं, तो किसे आप बेच रहे हैं? किसी एक संगठित जगह पे बेच रहे हैं या किसी असंगठित जगह पर बेच रहे हैं? और सोने को लेकर के अगर आप संगठित जगह पे जाते हैं तो आपको नगद तो मिल जाता है जो उस समय आपके भाव है। गहना बिल्कुल सही है, गहना खरीदने के बाद दिक्कत यह है कि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो उसमें जो मेकिंग चार्ज है और जो उसमें जो कुछ भी पत्थर लगे हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो पता चलता है कि आपने 100 दिया था, हो सकता है कि आप उससे कम मिले भले ही सोने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कट जाती हैं।
2: जी, सो लेट मी कम बैक टू माय क्वेश्चन। वी वर टॉकिंग अबाउट एज यू नो अमित वाज सेइंग दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रिगर एंड as we were discussing that the coming days equity markets may, you know, they are not getting positive triggers from anywhere, but an investor who is looking at a mid and who has a mid or long term horizon, wouldn't you say that this is a really good time to, you know, because they, like some people are saying that there's been a correction in the equity prices in the stock market, share prices, and so would you say that this is a good time to actually go in and, you know, buy quality shares, top shares? And
0: certainly, because market always needs money as well as the patience. Unfortunately, we always look for money and not for the patience.
2: Yes.
0: So what happens that when there is a correction in the market, we say, oh, we are going to lose everything. But those are the, I mean, something, most of the time it is the notional loss.
2: Yes.
0: So if you are putting money at this moment and when you are finding the quality stake at a stock at a very low price, that's a really good time. My only suggestion is that please do not put entire money into the stock market.
2: Yes.
0: You should also have some kind of hedging through the banks. You should also have some kind of hedging through the post offices. And you should also have some money put into the mutual fund.
2: Yes.
0: And apart from these three, if you put just 10% of total surplus money into gold, that would be really good.
2: Right.
1: अगले श्रोता के तौर पे महाराष्ट्र से के शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपना सवाल पूछिए।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मेरा क्वेश्चन ये था कि टीयर टू जो सिटी है, मतलब टीयर वन में जैसे मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या बड़ा सिटी, वहाँ बंदरगाह होता है पोर्ट, तो वहाँ इनकम का स्रोत जाता होता। टीयर टू आने वाले समय में किस लेवल पे इकोनॉमिक के तौर पे डेवलप हो सकता है?
0: देखिए, मझोले और छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और आपको एक चीज बता दें कि कई ऐसे कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इन शहरों में जाकर के काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन शहरों में श्रम की लागत थोड़ी सी कम होती है, उन शहरों में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या नहीं होती है। इनफैक्ट हम आपको बताएं कि आईटी कंपनियों ने कई अपने कॉल सेंटर ऐसे जगह पे खोले हैं जहां पर लोग उम्मीद भी नहीं करते थे वहां पर, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों या फिर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों की बात करें, वहां पर खोले हैं। तो छोटे शहरों में आर्थिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और यही वजह है कि हमने देखा है कि जब जब उस शहर के आसपास में सड़क अच्छी बन गई है या फिर वहां पर यातायात की अच्छी व्यवस्था हो गई, उन शहरों का और बेहतरी हुआ है। तो आप अगर छोटे शहर में है या मझोले शहर में है तो वहां पर आर्थिक परिस्थितियां और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है।
1: शिशिर, अगर रुपए की स्थिति पे आते हैं, रुपए ने तकरीबन आज 1 रुपए के आसपास डॉलर के मुकाबले बढ़त हासिल की है, क्या दर्शाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे, उन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए एक डॉलर विंडो भी स्थापित की थी, हालांकि इसके साथ साथ कुछ और खबरें भी हैं, शायद सीआरआर रेशियो में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें या आशंकाएं जाहिर की जा रही है।
2: सीआरआर रेशियो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बैंक्स ने।
0: देखिए, अभी जो शनिवार को इन्होंने 3 कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, और उसके साथ ही साथ जो डिलीवरी फॉरवर्ड मार्केट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए, इसका एक सकारात्मक असर पड़ा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अभी ये असर कुछ समय तक बना रहेगा।
1: और नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.6% की गिरावट से बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा।
2: And now let's take a look at the retail inflation for the month of September. It accelerated to 5.54% in September on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the fourth consecutive month this year. Last month's inflation reading was higher than the 4.83% recorded.

0: If the UPI amount is 3,000 and we divide the payment into 2,000 and 1,000 in two times, so then also it will attract the, you know, the surcharge.
1: If it is less than 2,000, then there won't be any MDR. And if it is more than 2,000, then only it will impact the thing. So your question is that if I pay just 2,000 rupees and 1,000 rupees, will it attract the MDR? Yes, of course it will. 2,000, for the 2,000 rupees it will, because 2,000 or more. So it will attract MDR. But please remember, you don't have to pay the MDR. It is a customer, it is a shopkeeper who has to pay at the time of getting money from the bank or the institutions.
2: कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. घरेलू म्यूचुअल फंड बाजार में सितंबर माह में 38,306 करोड़ रुपए का निवेश आया है. यह राशि पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है. भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने एसआईपी के माध्यम से होने वाला निवेश बढ़कर 32,490 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. सितंबर माह में इक्विटी एंड कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में सर्वाधिक 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में निवेश आया. हालांकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और कॉन्ट्रा फंड योजना में कुल मिलाकर निकासी हावी रही. इस दौरान गोल्ड एक्सचेंज फंड का निवेश 71.4% की बढ़त से 4,451 करोड़ के स्तर को तक पहुंच गया. हालांकि सितंबर के दौरान म्यूचुअल फंड से कुल मिलाकर निकासी हावी रही और 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि म्यूचुअल फंड योजना से निकाले गए. इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक दिल्ली से हमारे साथ आकाश मौजूद हैं. जी आकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए.
3: हेलो सर, नमस्ते.
2: नमस्ते,
3: मैं आकाश बोल रहा हूँ. मेरे दो सवाल है. पहला सवाल ये, मेरी एफडी बनी हुई है, तो उसमें एक साल होने के बाद हमारे को मैच्योर हो चुकी है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने कंपाउंड नहीं दिया. तो दूसरा सवाल जैसे कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने एफडी में इन्वेस्ट करा है अभी, तो गोल्ड जैसे एफडी का तो अमाउंट वही मिलेगा जितने भी परसेंट आएगा, तो गोल्ड में जैसे अप डाउन होता रहता है मार्केट प्राइस, तो हमें गोल्ड लेना सही रहेगा या एफडी में ही हमें बने रहना चाहिए? और कंपाउंड की कंप्लेंट किस अधिकारी पे करें हम?
1: देखिए, आपकी शर्त क्या थी जब आपने फिक्स डिपॉजिट लिया था? अगर उस समय जिस शर्त पे आपको भुगतान किया जाना है, उसी शर्त पे भुगतान होगा. ये याद रखिए कि जिस तारीख को आपने एफडी ली है. रहा सवाल सोने का, सोने के कीमतों में अगर उतार चढ़ाव होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर ऊंची कीमत पर खरीदी है और उससे ज्यादा कीमत ऊपर नहीं जा रही, तो आपको नुकसान होगा.
4: And let's move on to the next story. The 2026 Nobel Prize in Economics has been awarded to American economists Robert E. Hall and Mike Woodford for developing macroeconomic models that help policymakers stabilize economies during booms and recessions. The Royal Swedish Academy of Sciences said their work has strengthened the theoretical basis for fiscal and monetary policies and improved governments and central banks' ability to respond to economic fluctuations. The Nobel Committee said the economists developed models based on how households and businesses make decisions about spending, saving, investment and pricing, taking future economic conditions into account. Robert E. Hall is a professor at Stanford University, while Michael Woodford is a professor at Columbia University. And we have with us Shankar online from Bhopal. Shankar, welcome to the program, but please make your question very short. We are running out of time now.
5: Yeah, my quick question to Market Mantra team and Sarit. Sir, जो भी गलत हो सकता था वो शायद हिंदुस्तान के नजरिए से गलत हो चुका है. अब और कोई गलत जाने या खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो हैव वी टच द रॉक बॉटम? क्या अब यहाँ से हम धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें? क्या आपका क्या ओपिनियन? रिबाउंड
1: बाजार कितने स्तर पे जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां.
4: ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज कॉल्ड फॉर डबलिंग इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड बाय 2030. मिस्टर गोयल सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द बिजनेस प्लीनरी अंडर द 16th सेशन ऑफ द इंडिया यूके जॉइंट इकोनॉमिक and Trade Committee in New Delhi today. The minister called upon businesses in both countries to translate the opportunities created by the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement into expanded trade, investment, partnerships and job creation. And let's move on to commodities now. Global crude oil prices reversed course and moved higher today amid skepticism over US President Donald Trump's announcement of energy ceasefire between Ukraine and Russia. Brent crude was trading 1.2% up at $105.99 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading

0: over 1.2% higher at $92 and 98 cents per barrel at the time of writing this report.
1: घरेलू सराफा बाजार में सोना 0.9% की गिरावट से 148,061 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान से 2,20,295 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में अगर दोनों चीजों पे कच्चे तेल की कीमतें निरंतर दबाव बढ़ा रही हैं, लेकिन सोना चांदी भी कहीं ना कहीं अभी दबाव में ही नजर आ रहा है।
2: बिल्कुल, सोना जब तक डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही कमजोर होगा, और कच्चे तेल की जहां तक बात करें सऊदी अरब और उन जगह पर हमले होंगे तो आप उसके ऊपर दबाव पड़ने मतलब उसकी कीमतों में बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते।
1: जी शिशिर, और हमारा धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स शेड्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,363। कंट्रीज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 5.54% इन सितंबर दिस ईयर, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 1%। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। फॉर नाउ गुड बाय, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

11:40 और 55 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है गीत मेरे मनमीत और आज आपके संग है अर्पना। शुरू करते हैं गीत मेरे मनमीत के लता जी की आवाज के साथ। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। और इसके बाद किशोर कुमार की आवाज होगी और आनंद बख्शी का लिखा गीत होगा, आर टी बर्मन का संगीत होगा, फिल्म का नाम है अलग अलग। तो बैक टू बैक इन दो फिल्मों का आप गीतों का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ गीत मेरे मनमीत में।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, और संगीत जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, दो रास्ते फिल्म से ये गीत होगा। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए भी सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल

राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उसने सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं। इनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। एस्टोनिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उल्ले मादिसे ने राजधानी तेलिन में एस्टोनियाई संसद भवन रीकी कोगू में पद की शपथ ली। उन्होंने श्री अलार कारिस का स्थान लिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयंती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है जीने की राह।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। ये जो यादें होती हैं ना, उनमें से कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने के लिए किसी तारीख की, किसी मौके की जरूरत नहीं होती। जैसे एक खुशबू, एक गीत और एक मौसम। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिनसे कि अगर कोई भी अच्छी याद जुड़ी हो तो पूरा का पूरा अतीत सामने आ जाता है, एक तस्वीर बन जाती है। बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू भी कभी कभी किसी पुराने आंगन तक ले जाती है। और यादों की तो अपनी कोई घड़ी भी नहीं होती, वे जब आती हैं तो अपने साथ पूरा समय लेकर आती हैं। कभी मुस्कुराहट देती हैं, कभी आंखें नम कर देती हैं, लेकिन हर याद का मतलब लौटना नहीं होता। कुछ यादें हमें ये भी बताने आती हैं कि हमने कभी किसी पल को पूरी शिद्दत से, बहुत प्यार से जिया था। इसलिए आज जो याद आए उसे प्यार से याद कीजिए और फिर उसे उसकी जगह रहने दीजिए और रात को आगे बढ़ने दीजिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है हमशक्ल।

ठीक जैसे यादों की कोई घड़ी नहीं होती, वैसे ही जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो अक्सर शब्दों में नहीं कही जाती। अगर शब्दों में दिल की बातों को बांधने की कोशिश करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। जो दिल की सबसे सच्ची बात होती है वो या तो किसी गीत की धुन में उतरती है, या किसी खुशबू में लौट आती है, या अचानक किसी पुराने नाम के साथ यादों में उतर जाती है। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये भी थोड़े अजीब से होते हैं। इसे जितना हम छिपाने की कोशिश करते हैं उतनी भीतर से गहरे होते चले जाते हैं, और रात उन्हें आवाज देकर बहुत पास बुलाती है। शायद इसलिए देर रात सुने गए गीत, देर रात कही गई कोई बात सीधे दिल पर दस्तक देती है। दिन हमें व्यस्त रखता है और रात हमें संवेदनशील बनाती है। तो आज अगर आपका भी दिल आपसे कुछ कहना चाहता हो तो उसे रोकने की कोशिश जरा भी मत करिए। उस हर एक भावना का, हर एक सेंटिमेंट, हर एक इमोशन का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता है। बस उसे समझने के लिए थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी रात जो खुद के साथ गुजारनी होती है उसकी जरूरत होती है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अगला गीत फिल्म मन की आंखें से आपके लिए।

और आज निशिगंधा में जब हम बात कर रहे हैं रात की, मन की और रात के संगीत की, यादों की, तो फिर एक और बात याद आती है जो सीधे रात से जुड़ी हुई है। रात दिन की थकती हुई कहानियों का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि अपने आप से मिलने का सबसे खूबसूरत वक्त है। जब शहर की आवाजें कम हो जाती हैं, तब भीतर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। किसी को नींद की तलाश है, किसी को किसी के अपने की याद की तलाश है। किसी के पास यूं तो कहने को बहुत कुछ है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बिल्कुल खाली है। और रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अनजान लोगों के बीच भी बहुत सारी कहानियां उपस्थित रहता है। तो इस रात अपने लिए कुछ पल जरूर संभाल कर रखिए और कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। आज की रात ये कहती है कि आप अपने आप को महसूस करना सीखिए, खुद के साथ ठहरना सीखिए। और हमारा FM गोल्ड यानी कि ये रेडियो स्टेशन जो हमारे मन का रेडियो है, ये सबके साथ ठहरता है, आपसे आपकी बातें आप तक भी पहुंचाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निशिगंधा। निशिगंधा के बाद हमारे और भी कार्यक्रम होंगे। फिलहाल सुनते हैं एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

मेगाहर्ट्ज पर, और आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अगला गीत आप सभी के लिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है नया दौर।

ये जो रात की चाय होती है ना, जी हाँ रात की चाय, बात जब रात की हो रही है, रात की यादों की हो रही है, तो रात की चाय को कैसे भूल सकते हैं। जो रात की चाय होती है ना, वो जाने क्यों दिन भर की बातों में घुल जाती है। पहली चुस्की जैसे कहती है, अब थोड़ा और अपने पास लौटो, और कभी इसी प्याले के साथ किसी का इंतजार किया था, याद है। मोबाइल की स्क्रीन बार बार देखना और फिर खुद ही मुस्कुरा देना, जैसे कोई

पुरानी बात याद आ गई हो। कभी कोई सामने बैठा होता था और चाय ठंडी हो जाती थी, पर जनाब बातें नहीं थमती थी। आज वही प्याला अकेला है, मगर स्मृति अब भी गर्म है। शायद चीजें नहीं, उनसे जुड़े हुए पल हमें बार बार आकर छू जाते हैं। इसलिए अगली बार अगर चाय बनाइए जनाब, तो जल्दी जल्दी मत पीजिएगा। एक घूंट बीते कल के नाम और एक आज के नाम जरूर रखिएगा, और आखिरी चुस्की उस व्यक्ति के नाम रखिएगा जिसने कभी आपकी साधारण सी शाम को भी बेहद खास बना दिया था। क्योंकि स्वाद जो है वो जीभ से उतर जाते हैं, लेकिन बातें और यादें सीधे जाकर स्मृति में घुल जाती हैं, बस जाती हैं। और ये जो बातें हैं ना रात के साथ, ये बार बार याद आकर मन के दरवाजे पर हौले हौले दस्तक देती रहती हैं। और अब अगला गीत निशिगंधा में मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरे सनम।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि फिर थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है। साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाएं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतर खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने कल सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु महिला सिंगल्स के शुरुआती दौर में कोरिया की एन से यंग के विरुद्ध कठिन चुनौती का सामना करना होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी खेल 2026 के क्वार्टर फाइनल से बाहर होकर खिताब का बचाव करने से चूकने के बाद पहली बार कोर्ट पर वापसी करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the JETCO Business Plenary under the 16th session of the India-UK Joint Economic and Trade Committee, JETCO, in New Delhi yesterday. The minister reaffirmed country's commitment to deepening India-UK economic cooperation through sustained engagement, stronger institutional mechanisms and enhanced collaboration. He said this will unlock new opportunities for businesses in both the countries.
2: We can create greater corridors of cooperation in fintech, insurance, cross-border payments, transition finance, trade finance. We should really be looking at both these centers becoming one connected pathway towards greater progress and prosperity. And finally, healthcare and consumer sectors, whether it is generic pharma on the Indian side or branded pharmaceutical innovative products on the UK side, our diagnostics, food processing and consumer goods, India's affordability and Britain's discovery together can become a force multiplier.
1: The Commerce and Industry Minister addressed the Delhi Dialogue 2026 in New Delhi yesterday. Mr. Goyal emphasized that the country's youth must actively participate in India's development journey by bringing fresh perspectives, innovative ideas, and a strong sense of purpose to policymaking. Centre has urged all states and union territories to ensure the prominent display of rates charged for services and facilities offered by clinical establishments. The move aims to empower patients to make informed healthcare decisions, prevent billing-related disputes, and strengthen trust in healthcare services. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava has written a letter to the chief secretaries of all the states and UTs in this regard. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Prahlad Joshi, held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. The meeting held a discussion on various issues concerning sugarcane farmers, including ground-level challenges, discrepancies in recovery figures reported by sugar mills, weighing procedures, wastage, laboratory testing and crop insurance. This committee will comprise representatives from the central government, state governments of Karnataka and Maharashtra, farmers' organizations and sugar mills, as well as subject matter expert scientists. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. Om Prakash Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Mr. Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की खूबसूरत से महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने की इस खूबसूरत महफिल में आज जो आप पहला गीत सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये बातें हमने कई बार की हैं कि प्रेम को लिखना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। प्रेम की व्याख्या को शब्दों में बांधना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम और या फिर सबसे आसान काम। प्रेम कभी किसी अनुबंध की पंक्ति में नहीं होता, वह तो उस सुगंध की तरह होता है जो फूल से अनुमति नहीं मांगता फिर भी उसके साथ बना रहता है। उसका जन्म किसी नियम पुस्तिका में नहीं बल्कि मन के अंदर धड़कते हुए विश्वास में होता है, जहां देना किसी गणना का विषय नहीं रहता। और ये प्रेम जो है ना, जब कर्तव्य का वस्त्र पहन लेता है तब मुस्कुराहटों पर एक अदृश्य बोझ उतर आता है। हम साथ तो चलते हैं किंतु उनकी ऊष्मा धीरे धीरे अनजानी होने लगती है। नेत्र मिलते हैं पर उनमें वह आद्र चमक नहीं उतरती जो बिना कहे समूचा आकाश पढ़ लेती थी। कर्तव्य आवश्यक है पर जीवन व्यवस्था संभालता है, घर को आकार देता है, रिश्तों को आधार देता है, किंतु प्रेम केवल आधार पर नहीं टिका करता। उसे चाहिए एक सहज स्पर्श की निष्कपटता, एक प्रतीक्षा की मधुर लय, एक स्मरण की भीगी गर्माहट और वह अपनापन जो किसी कारण का मोहताज नहीं होता, जहां प्रत्येक स्नेहिल व्यवहार सिर्फ इसलिए निभाया जाए कि निभाना आवश्यक है, वहां भावों की धरती धीरे धीरे बंजर होने लगती है। और अब अगला गीत, फिल्म का नाम है जीने की राह, आवाज है मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है कभी कभी।

मैंने तुम्हें किसी गुलदान में नहीं रखा, ना ही किसी चमकते कोने में सजाया, जहां ऋतुएं बदलते हैं, रंग अपना परिचय खो बैठते हैं। मैंने तुम्हें रखा था एक ऐसे पन्ने के पास जहां अक्षर अभी भी अपने जन्म की गर्माहट संभाले हुए थे, जहां एक अधूरी पंक्ति प्रतिदिन अपना अर्थ बदलती थी और एक विराम चिन्ह पूरे आकाश के जितना विस्तृत लगता था। कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती। कहा जाता है पंखुड़ियां अधिक दिनों तक नहीं ठहरती, किंतु मुझे सदैव लगा कि उनका जाना ही उनकी पराजय नहीं होती। कुछ चीजें अपने रंग से नहीं, अपने स्पर्श की छाप से जीवित रहती हैं। इसलिए मैंने किसी उपहार की चमक से अधिक विचारों की रोशनी को चुना, क्योंकि कागज पर दर्ज एक अनुभूति वर्षों बाद भी उतनी ही ताजा मिल सकती है जितनी किसी पहली दोपहर में थी, जितनी किसी पहली दोपहर में थी। और अगला गीत, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है मोहम्मद रफी की।

जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं, तो घर याद आता है। जीवन की धूप में तपा हुआ थका हारा, जब छांव ढूंढता हूं, लौटने की सोचता हूं, तो घर याद आता है। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। घर है कहीं, इसलिए संभव है लौट पाना कहीं से भी। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है गूंज उठे शहनाई। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए सर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रज मोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए तकनीक और परंपरा को साथ चलना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कल नई दिल्ली में निरामयता, दक्षिण एशियाई ग्रंथों और प्रथाओं में उपचार और स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद ये बात कही।

डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि निरामयता व्यक्ति, समाज और प्राकृतिक दुनिया के बीच के संबंधों की सभ्यतागत समझ की खोज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के व्यापार, नवाचार, विज्ञान और व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष, नागरिक, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत ब्रिटेन सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रतजगों का क्या होगा, अब मेरे रतजगों का क्या होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहां था, ये जब न गुजरा था तब कहां था, कहीं तो होगा, गुजर गया है तो अब कहां है, कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है, ये वक्त क्या है। और आज सुरमई में अगला गीत, फिल्म का नाम है आसपास, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आप साथ हूं मैं जयति। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अगला गीत फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आवाज है उदित नारायण और लता मंगेशकर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की हर सुबह शाम और रात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। इस सिलसिले में साथ हमारे जब जीवन की हर सुबह शाम और रात होगी। अधिकार होगा जब एक दूसरे के हर एक पल पर हम दोनों के प्रेम का, तब कहीं तुम्हारी चाहत भरी हसरत से फुर्सत में मेरी मुलाकात होगी। कभी आना पूरा एक जीवन साथ लेकर, तभी एक दूसरे से बात होगी। और अगला गीत फिल्म का नाम है अभिनेत्री, आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। तुम अपने आसमान के तारे गिनना, मैं अपने आसमान के गिनूंगी। चलो फिर बातें भी करते हैं, चलो फिर बातें भी करते हैं। तुम अपने जहान की बातें करना, मैं अपने जहान की।

चलो फिर सुनते भी हैं, चलो फिर सुनते भी हैं, तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी, तुम मेरी सुन लेना, मैं तुम्हारी सुन लूंगी, तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है, तुम ढूंढ लाना वो शब्द जो तुम्हें पसंद है, मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो, मैं ढूंढ लाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे पसंद हो, चलो तारे गिनते हैं, चलो तारे गिनते हैं। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लोफर।

वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ और फिर मिलने के वादे के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा उद्योग प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण कैटलॉग का शुभारंभ किया। ये स्वदेशी तकनीक प्रदर्शित करने और उद्योगों द्वारा उनके हस्तांतरण अपनाने तथा व्यवसायीकरण को सुगम बनाने के लिए विवरण सूची अनुसंधान और उद्योगों के बीच की दूरी पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रिजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला राष्ट्रीय सरस मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी।

तेरी आवाज में मेरी आवाज का मिल जाना, जैसे किसी ख्वाब का हकीकत बन जाना। तू एक गीत की पहली सी पंक्ति बन जाए, मैं उस गीत का हर लफ्ज गुनगुनाऊं। नमस्कार दोस्तों, रात के इस सुहाने पहर में मैं अर्चना गोयल आपका स्वागत करती हूं। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अपने बेहद खास कार्यक्रम हमराही में। दोस्तों, आज की रात कुछ अलग है। आज हम अकेले गुनगुनाने वाले गीत नहीं, बल्कि अपनी महफिल सजाएंगे जिसमें दो आवाजें हैं या किसी का साथ है। दो दिल हैं, दो एहसास हैं और एक खूबसूरत सी मोहब्बत है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ।

साहेब बीबी और गुलाम। इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले और सखियों को। क्या आपने कभी ऐसा गीत सुना है जिसमें मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक वादा बन जाती है? प्यार में वादे करना आसान है लेकिन उन वादों को निभाना शायद वही सच्ची मोहब्बत की पहचान है। क्या आपने कभी किसी से ऐसा वादा किया है जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? कोई ऐसा वादा जो सालों बाद भी आपके दिल में उसी तरह महकता है? तो सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

हरियाली और रास्ता फिल्म में ये आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। मोहब्बत का ये अंदाज भी कितना प्यारा है ना, कभी एक रूठता है तो दूसरा मनाता है, कभी एक शिकायत करता है तो दूसरा मुस्कुराकर उस शिकायत को भी प्यार में बदल देता है। और सच कहें तो रिश्तों में अगर थोड़ी नोक झोंक ना हो तो शायद प्यार की कहानी में कुछ कमी सी रह जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रूठने में भी अपनापन है और मनाने में भी सम्मान, क्योंकि रिश्ता वही खूबसूरत होता है जहां दोनों एक दूसरे के दिल की कद्र करें।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म सूरज से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल।

दोस्तों, जिंदगी का सफर अकेले भी तय किया जा सकता है, लेकिन किसी अपने का साथ मिल जाए तो मुश्किल रास्तों पर भी चलने का हौसला आ जाता है। एक अच्छा हमसफर वो नहीं जो खुशियों में आपके साथ हंसे, बल्कि वो है जो आपकी खामोशी समझे, आपकी थकान को समझे और बिना कहे ये एहसास दिला दे कि आप अकेले नहीं हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो लोग अनजान रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मंजिल का पता पूरी तरह नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं।

0: भविष्य की अनिश्चितता अब उन्हें डरावनी नहीं लगती, क्योंकि साथ है एक दूसरे का।
1: हुस्न जब जब

रात गहराती जा रही है और इस रात के साथ हमारे गीतों का सफर भी और खूबसूरत होता जा रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि रात के समय कुछ गीत दिन के मुकाबले ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं? शायद इसलिए कि दिन भर की भागदौड़ के बाद रात हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है, उन बातों को याद करने का समय देती है जिन्हें हम अपनी व्यस्तता में कहीं पीछे छोड़ आए थे। ठीक कहा ना मैंने?

चांद निकले तो तेरा ख्याल आता है, दिल चुप रहे फिर भी सवाल आता है। कौन कहता है दूरियों से मिट जाता है प्यार, कभी कभी फासलों में भी कमाल होता है। और वह एक ऐसा गीत जिसमें सुरों की मिठास के साथ प्रेम की एक नर्म सी दुनिया बसती है। सुनिए और महसूस कीजिए उस पुराने सिनेमाई रोमांस को जिसका जादू आज भी कम नहीं हुआ। लव मैरिज फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

दोस्तों, हर बात को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी की आंखों में देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। कभी मुस्कान बता देती है कि दिल में कोई खास जगह बना चुका है, और कभी एक नजर इतनी गहरी होती है कि याद बरसों तक चलती है। मोहब्बत का यही तो जादू है जो साधारण से पलों को भी असाधारण बना देता है। जो रिश्ते दिल में बसते हैं उनमें दिखावे से ज्यादा अहमियत सच्चाई की होती है। आइए अब सुनते हैं ऐसा युगल गीत जो अपने सहज रोमांस और मधुर धुन के कारण आज भी दिलों में है।

आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आज हमने उन गीतों को याद किया जिसमें दो आवाजें थी, लेकिन एहसास एक था। ऐसे गीत जो हमें बताते हैं कि प्रेम केवल कहने की चीज नहीं बल्कि हर दिन निभाने का नाम है। रात ढले तो यादों का कारवा निकले, दिल से दिल तक प्यार का रास्ता निकले। गीत खत्म हो, धुने खामोश हो जाए, मगर दिल में मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे।

और अब इस गीत के साथ ही अर्चना गोयल आपसे विदा चाहती है कार्यक्रम हमराही से। 4:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम अरुणिमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और अब वक्त हुआ है समाचारों का, ये सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्ष

0: व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का उल्लेख किया। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में तमिलनाडु पुदुचेरी में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for doubling India-UK bilateral trade by 2030. Mr. Goyal said this while addressing the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आप सभी को सुबह की पावन बेला में बहुत बहुत नमस्कार। एक नई सुबह, एक नया दिन, नई उम्मीदें और जीवन को एक बार फिर से खूबसूरती से जीने का एक नया अवसर लेकर हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आज की इस सुबह हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे माँ दुर्गा के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पण करके। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से करते हैं।

आज नवरात्रि का पावन अवसर है। चारों ओर भक्ति का वातावरण है। कहीं माँ की जयकारे गूंज रही हैं, कहीं मंदिरों में आरती हो रही है, कहीं घर के आंगन में दीपक जल रहा है, तो कहीं कोई भक्त आंखें बंद करके बस इतना कह रहा है, हे माँ मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहते भी हैं जब भी मन के आंगन में अंधेरा छा जाता है, माँ का नाम लेते ही विश्वास लौट आता है। राहें चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, माँ का आशीष हो तो हौसला बढ़ जाता है।

माँ दुर्गा ये नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। एक और माँ का ममतामयी स्वरूप जो अपने बच्चों को स्नेह से संभालता है और दूसरी ओर उसका दुर्गा स्वरूप जो अन्याय और बुराई के सामने अडिग होकर खड़ा रहता है। माँ हमें सिखाती

सकती हैं, प्रेम करना भी शक्ति है और गलत के विरुद्ध आवाज उठाना भी शक्ति है। दूसरों के आंसू पोंछना भी पूजा है और अपने भीतर के डर को हराना भी साधना है।

दोस्तों, नवरात्रि में मां के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप हमें जीवन का एक सुंदर संदेश देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मां की भक्ति केवल सर झुकाने से उनके में नहीं बल्कि उनके गुणों को जीवन में अपनाने से है। दीपक जलाना ही आराधना नहीं, किसी के अंधेरे में उजाला बन जाना ही सच्ची साधना है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और अरुणिमा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:34 और 32 सेकंड।

दोस्तों, पूजा में हम माँ को फूल अर्पित करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हमारे स्नेह और सहयोग की आवश्यकता है? किसी बुजुर्ग को हमारी 2 मिनट की बातचीत चाहिए, किसी बच्चे को हमारा प्रोत्साहन चाहिए, किसी मित्र को हमारी बात सुनने वाला भरोसेमंद साथी चाहिए, किसी परेशान को सिर्फ इतना चाहिए कि घबराइए मत, मैं आपकी बात समझने की कोशिश करता हूं। यही है असली

क्यों ना आज एक छोटा सा संकल्प लें, हम किसी की आलोचना करने से पहले उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रियजनों को केवल उनकी कमियां नहीं बताएंगे बल्कि उनकी अच्छाइयों की सराहना भी करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने प्रति भी थोड़े दयालु बनना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हर गलती के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराना है।

के इस कार्यक्रम में हम कुछ पल अपने मन के नाम करते हैं। यदि आप इस समय किसी शांत स्थान पर बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए और सहज भाव से मन ही मन माँ का स्मरण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर विश्वास का दीपक जल रहा है। ये दीपक आपको याद दिलाता है कि आप हर परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब समय है आज की इस सुंदर और भक्तिमय सुबह को विदा कहने का। आज अरुणिमा में हमने माँ की महिमा को याद किया, उनके स्वरूपों से मिलने वाली प्रेरणा पर बात की और समझने की कोशिश की कि सुबह की सकारात्मक सोच किस प्रकार हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। माँ का नाम हो होठों पर, मन में नया उजाला, हर मुश्किल से लड़ने का हो अपने भीतर विश्वास, हर सुबह एक नई उम्मीद, हर दिन एक नई उड़ान, माँ की कृपा से रोशन रहे जीवन का हर आयाम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में शामिल होने वाले सभी गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर श्री शाह ने कहा कि ये बैठक आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में दिल्ली संवाद कार्यक्रम में कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि श्री दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। श्री ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ये सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय अब ये तय करेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की पहचान अलग अलग की जा सकती है या पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करना आवश्यक है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। विस्फोट का सटीक स्थान नांगी टकरी क्षेत्र में सतवाल नाकी है, जहां से सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच कल हालिया क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कल शाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से फोन पर बातचीत की। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का आयोजन कर रहा है। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेले का उद्घाटन करेंगी। मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन 2026 में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में ओलंपिक चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The centre has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugar cane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi held a meeting with delegations of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra in New Delhi yesterday. Uttar Pradesh government has provided 493 crore rupees in financial assistance to farmers affected by floods, excessive rainfall, hailstorms and cyclones. In the function organized

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। सुबह के 5:11 हो चुके हैं और आपके साथ कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुबह की प्यारी सी छटा में आप सभी को एक नई सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी बात से आज की शुरुआत करना चाहूंगी। हर सुबह अपने साथ एक नया पैगाम लाती है, कभी उम्मीद, कभी हौसला, कभी मुस्कान लाती है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, नई सुबह जीवन को फिर से जीने का बहाना लाती है। तो आइए अपनी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं अच्छे विचारों, मधुर संगीत और सकारात्मक भावनाओं के साथ, भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ।

दोस्तों, आपने के शांत वातावरण को ध्यान से महसूस किया है? जब आसमान धीरे धीरे अपना रंग बदलता है, जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, जब पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं और पक्षियों की आवाजें वातावरण में संगीत घोल देती हैं, तब लगता है प्रकृति हमें कोई सुंदर संदेश दे रही हो। प्रकृति कहती है, ठहरिए, कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने आसपास बिखरी सुंदरता को देखिए।

साथियों, हमारा विचार है कि अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, शुक्रिया से कीजिए। जरा सोचिए, सुबह जब हमारी आंख खुलती है तो हमारे पास एक नया दिन होता है, सांसों का साथ होता है, कुछ नया सीखने का अवसर होता है और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने की संभावना होती है। फिर क्यों ना हम सबसे पहले उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो हमारे पास ही हैं। साथ ही अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूत सुहानी और मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:27:59। दोस्तों, सुबह का समय अपने भीतर झांकने का भी समय है। जब संसार धीरे धीरे जाग रहा होता है, तब कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताना मन को अद्भुत शांति देता है। प्रार्थना वो भावना है जिसमें हम अपने मन का बोझ हल्का करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और बेहतर इंसान बनने का संकल्प लेते हैं। आइए कुछ पल मन ही मन ईश्वर को याद करें।